0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें समाप्त फरमाइए। कुमामोतो प्रीफेक्चर में हालिया जलजिले से मुतासरा गैर मुल्कियों के लिए कई जुबानों में मुतरजम की सहूलियात दस्तियाब हैं। प्रीफेक्चर की हुकूमत आमतौर पर यह सहूलत रहायशी मराकज में क्याम पजीर अफराद और दौरा करने वाले गैर मुल्कियों को फराहम करती है। प्रीफेक्चर के हुकाम का कहना है कि ऐसे गैर मुल्की बाशिंदे और सियाह जिन्हें तिब्बी इमदाद की ज़रूरत हो वो भी इस सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्विस के इस्तेमाल की मिसालों में तिब्बी इदारों और गैर मुल्कियों को तिब्बी बातचीत या मुआयने के दौरान बातचीत करने में मदद और गैर मुल्की शहरियों और किसी तिब्बी इदारे के दरमियान राबता वगैरह शामिल हैं। यह सर्विस 22 जुबानों में दस्तियाब है, जिनमें अंग्रेजी, नेपाली, हिंदी, बंगाली और उर्दू शामिल हैं। यह सर्विस मुफ्त है, ताहम पेशगी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन का अमल कुमामोतो प्रीफेक्चरल गवर्नमेंट की वेबसाइट के जरिए मुकम्मल किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन की तकमील के बाद सार्फिन को सर्विस सेंटर से इस सहूलत से इस्तेफादे के लिए एक मखसूस टेलीफोन नंबर मौसूल हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन और इसराइल के रहनुमाओं से बातचीत की है। ये मुलाकातें ऐसे वक्त पर हुई हैं जब ट्रंप दोनों खित्तों में जंगों के बारे में अपने रद्द अमल पर गौर कर रहे हैं। ये अलग अलग मुलाकातें मंगल को व्हाइट हाउस में बंद दरवाजों के पीछे हुई। यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि उनकी ट्रंप के साथ मुलाकात अच्छी रही। जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने अमरीकी साख्ता पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इंटरसेप्टर मिसाइलों की तैयारी के लाइसेंस पर बातचीत की है और रूस के साथ अमन की नई सफारती कोशिशों के लिए अच्छी उम्मीद का इजहार किया। ट्रंप ने बाद में इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की। फरवरी में दोनों ममालिक की जानिब से ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन के आगाज के बाद से दोनों रहनुमाओं की यह पहली बिलमुशाफा मुलाकात थी। इसराइली मीडिया की इत्तलात के मुताबिक उन्होंने बुनियादी तौर पर ईरान पर तबादला ख्याल किया और तेहरान को जौहरी हथियारों के हसूल से रोकने के अज़्म का इयादा किया। इसराइली हुकूमत ने ट्रंप, नेतन्याहू और अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की एक तस्वीर जारी की है जिसमें तीनों मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा लगता है कि इसका मकसद ये जाहिर करना है कि दोनों फरीकों के दरमियान अब भी किस कदर करीबी ताल्लुकात हैं। अमरीका और इसराइल के दरमियान लेबनान के मामले पर मुबैना तौर पर तनाव में इजाफा देखा गया है। जापानी हुकूमत के एक पैनल ने फी घंटा कम अज कम औसत उजरत में तकरीबन 5% इजाफा करने की सिफारिश की है। 55 येन का यह इजाफा गुज़श्ते साल के बाद तारीख में दूसरा बुलंद तरीन इजाफा होगा। यह सिफारिश मुल्क भर में उजरतों में इजाफे के रुझान के दरमियान की गई है। वजारत मेहनत के पैनल का हदफ रवां माली साल के लिए फी घंटा कौमी औसत उजरत को 1176 येन या तकरीबन 7.18 डॉलर तक लाना है। ये रकम गुज़श्ता माली साल में हासिल शुदा 66 येन फी घंटा के हदफ से कम है, लेकिन इसके बावजूद ये पैनल की जानिब से माली साल 1978 में सिफारिशात के आगाज के बाद से दूसरा सबसे बड़ा इजाफा होगा। पैनल ने उजरतों में इजाफे की मुल्क की रफ्तार की निशानदेही की, लेकिन अफराते जर की सुस्त शरा को उजरत में कम इजाफे की सिफारिश की वजह करार दिया। अब प्रीफेक्चरों के पैनल हतमी आदा दुश्मार पर बातचीत शुरू करेंगे। हुकूमत 2030 की दहाई के अवायल तक कम अज कम कौमी औसत उजरत को 1500 येन या 9.15 डॉलर फी घंटा करने के लिए कोशिशें कर रही है।
1: और अब आखिर में आज की अहम खबर पर एक नज़र। मंगल को आने वाले ताकतवर जलजले के बाद जापान के जनूब मगरबी प्रीफेक्चर कुमामोतो में सीज़मिक एक्टिविटीज़ यानी जलजलाजाती सरगर्मियां बुलंद सतह पर बरकरार हैं। हुकाम ने लोगों पर जोर दिया है कि वो अगले एक हफ्ते या इससे ज़ायद तक जलजले के शदीद झटकों से चौकन्ना रहें। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।

ये NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 30 जुलाई बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। जापान के कुमामोतो प्रीफेक्चर के अधिकारियों का कहना है कि प्रीफेक्चर में आए भूकंपों में 34 लोगों की मौत हो गई है। इनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनकी मौत संभवतः आपदा संबंधी कारणों से हुई। बचाव कर्मी जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं, इसलिए ये संख्या अभी और बढ़ सकती है। कुमामोतो प्रीफेक्चर में आए भीषण भूकंप की तीव्रता जापान के 0 से 7 के भूकंप मापी पैमाने पर 7 दर्ज की गई। मौसम विज्ञान एजेंसी ने इस आपदा को 2026 कुमामोतो भूकंप नाम दिया है। एजेंसी का कहना है कि मंगलवार को आए शक्तिशाली भूकंप के बाद से बृहस्पतिवार दोपहर 2 बजे तक प्रीफेक्चर और आसपास के इलाकों में कुल 270 झटके दर्ज किए गए। इनमें मंगलवार को आया 7.1 की तीव्रता का भूकंप शामिल नहीं है। एजेंसी के अधिकारियों के अनुसार भूकंपीय गतिविधियां काफ़ी अधिक बनी हुई हैं और अब तक 5 निम्न की तीव्रता के 4 झटके और 4 की तीव्रता के 14 झटके आ चुके हैं। एजेंसी ने चेतावनी दी है कि भावी भूकंपों के स्थान और तीव्रता के आधार पर तेज झटके महसूस किए जा सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार अगले 1 सप्ताह या उससे अधिक समय तक, विशेषकर अगले कुछ दिनों में, बड़े झटकों का खतरा बना हुआ है। इस बीच प्रभावित क्षेत्रों में बिजली और जल की आपूर्ति अब भी बाधित है। 6 की तीव्रता का भूकंप झेलने वाले यात्सुशिरो शहर में बृहस्पतिवार सुबह से ही कई लोगों को पानी के टैंकरों के सामने कतार लगाए देखा गया। 70 से अधिक उम्र की एक महिला

ने कहा कि परेशानी काफी है, नहाने या मुंह हाथ धोने तक का पानी नहीं है। वहीं 40 से अधिक उम्र के एक व्यक्ति का कहना था कि कपड़े धोने जैसे रोजमर्रा के कामों के लिए और यहां तक कि पीने के लिए भी पानी नहीं है और पर्याप्त भोजन भी नहीं है। एक विशेषज्ञ का कहना है कि मंगलवार को दक्षिण पश्चिमी प्रीफेक्चर कुमामोतो के एक शॉपिंग मॉल में भीषण विस्फोट, उस दिन प्रीफेक्चर में आए तगड़े भूकंप के बाद मॉल में शायद ज्वलनशील गैस जमा होने से दबाव बढ़ने के कारण हुआ होगा। गौरतलब है कि यह विस्फोट काशिमा नगर के ईयोन मॉल कुमामोतो में हुआ। टोक्यो विश्वविद्यालय में ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के प्रोफेसर मोगी तोशियो का कहना है कि जांच पूरी होने तक विस्फोट के कारणों के बारे में ठीक से कहा नहीं जा सकता, लेकिन मॉल में शायद प्रोपेन जैसी ज्वलनशील गैस जमा होने के बाद उसमें आग लग गई होगी। प्रोफेसर मोगी ने कहा कि किसी मकान के कमरे में विस्फोट होने की स्थिति में खिड़कियां तो टूट जाती हैं, लेकिन दीवारें खड़ी रहती हैं। उनका कहना है कि मॉल में खिड़कियां बहुत कम थीं और ऐसे में गैस का दाब इतना बढ़ गया होगा कि दीवारें ढह गईं, क्योंकि गैस को बाहर निकलने का रास्ता बहुत कम मिला। मोगी कहते हैं कि मॉल में पहली से दूसरी मंजिल तक फैली एक बड़ी खुली जगह थी और इतनी बड़ी जगह में इतनी अधिक मात्रा में गैस का जमा होना और उच्च दाब बनना असंभव है। मोगी को लगता है कि पीछे किसी कमरे जैसी बंद जगह में गैस का रिसाव हुआ होगा जिससे विस्फोट हुआ।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सानाए ने अपनी पार्टी की कार्यकारिणी को बताया है कि वो अप्रैल से शुरू होने वाले 2 वर्षों के लिए खाद्य पदार्थों पर उपभोग कर को घटाकर 1% करना चाहती हैं। इस योजना में निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए भत्ते भी शामिल हैं, जिनसे ये कर एक तरह से शून्य हो जाएगा। बृहस्पतिवार को लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी LDP की मंडल बैठक में ताकाइची ने इस योजना को सर्वोत्तम उपाय बताया। ये योजना LDP कर प्रणाली अनुसंधान आयोग के अध्यक्ष के हालिया प्रस्ताव पर आधारित है। ताकाइची ने पार्टी कार्यकारिणी को निर्देश दिया कि वो अगस्त की शुरुआत तक पार्टी के भीतर आम सहमति बनाने की दिशा में काम करे। LDP मुख्य रूप से अपनी कर समिति में आम सहमति बनाने के लिए चर्चा जारी रखेगी। बुधवार को ही बैठक में प्रधानमंत्री और अन्य दलों के नेताओं के बीच कर कटौती पर सहमति नहीं बन पाई थी। इसके बजाय उन्होंने विभिन्न दलों के रुख को सूचीबद्ध किया। वरिष्ठ अधिकारियों सहित LDP के कुछ सदस्य अब भी कर कटौती का विरोध कर रहे हैं। जापान सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के दुष्प्रभावों का हवाला देते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए अपने आर्थिक विकास अनुमान में कटौती की है। मंत्रिमंडल कार्यालय ने मार्च 2027 में समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपना नवीनतम अनुमान बृहस्पतिवार को जारी किया। सकल घरेलू उत्पाद GDP में मुद्रास्फीति को समायोजित करते हुए लगभग 0.9% की वृद्धि होने की उम्मीद है। ये पिछले साल दिसंबर के लगभग 1.3% के अनुमान से 0.4% अंक कम है। कार्यालय का कहना है कि कच्चे तेल की उच्च कीमतों के कारण खाद्य पदार्थों और माल की लागत बढ़ रही है और अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ रहा है। NHK को पता चला है कि जापान सरकार दक्षिण पश्चिम अफ्रीकी देश नामीबिया में दुर्लभ धातु खनन परियोजना में 5 अरब येन यानी लगभग 3.6 करोड़ डॉलर तक का निवेश करने की योजना बना रही है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि जापान का प्रमुख ट्रेडिंग हाउस टोयोटा त्सुशो इस परियोजना के लिए एक कंपनी का नेतृत्व करेगा। ये निवेश सरकार से संबद्ध जापान ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेटल्स एंड एनर्जी सिक्योरिटी के माध्यम से किया जाएगा। नामीबिया की खानों में डिस्प्रोसियम के विशाल भंडार हैं, जो शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए आवश्यक है। इनमें इट्रियम भी पाया जाता है, जिसका उपयोग स्मार्टफोन में होता है। जापान और नामीबिया की सरकारों ने फरवरी में दुर्लभ धातु खनिजों के खनन प्रयासों पर चर्चा करने पर सहमति व्यक्त की थी। इलेक्ट्रिक वाहनों, स्मार्टफोन और अन्य उपकरणों के निर्माताओं के लिए ऐसे खनिज अपरिहार्य हैं। जापान दुर्लभ धातु खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं में भी विविधता लाने के प्रयास कर रहा है, क्योंकि शीर्ष उत्पादक चीन निर्यात नियंत्रण कड़े कर रहा है। इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 22वें पाठ में सीखेंगे साथ मिलकर कुछ करने का सुझाव देना।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो चीनी फोटोग्राफर मिया और जापानी छात्र काइतो के साथ होक्काइडो में घूम रही है।
0: आज तीनों सापोरो हिमोत्सव देखने आए हैं। उनके सामने बर्फ से एक किले की बड़ी सी मूर्ति बनी हुई है। बहुत सारे लोग ये उत्सव देखने के लिए आए हुए हैं।
1: तो आइए सुनते हैं 22वें पाठ की बातचीत।
2: すごい。ダム、見て見て。ああ、大きいですね。初めて見ました。
3: どうやって作ったんだろう。
2: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
4: いいね。
0: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
1: किले की हिम प्रतिमा के सामने पहुंचकर मिया ने उत्सुकता से कहा,
2: सुगोई।
1: अरे वाह।
2: ताम, मीते मीते।
1: ताम, देखो।
0: ताम भी शिल्पकला देखकर बहुत प्रभावित हो गई। उसने कहा,
2: ओकी डेसने।
1: वाह, बड़ी है ना।
2: हजुमेते मिमाशिता।
1: पहली बार देख रही हूँ।
0: उसके बाद काइतो ने उस किले की मूर्ति की तरफ देखते हुए कहा,
3: तो यत्ते त्सुकत्ता ndaro?
0: कैसे बनाई होगी?
1: फिर ताम ने कहा,
2: किरे देसु ने।
1: सुंदर है ना?
2: मिन्ना दे शशिन ओ तोरिमाशो।
1: साथ में फोटो खींचते हैं।
0: तब मिया ने कहा,
4: ई ने।
1: ठीक है।
0: सापोरो हिमोत्सव का आयोजन हर वर्ष फरवरी में होता है। इसमें बर्फ से बनी लगभग 200 प्रतिमाएं देखी जा सकती हैं। कुछ की ऊंचाई तो 15 मीटर तक भी होती है। इतनी बड़ी प्रतिमाएं बनाना आसान नहीं होता होगा।
1: शिल्पकार मचान बनाकर और क्रेन का इस्तेमाल करके बर्फ का ढेर लगाते हैं। उसके बाद में बर्फ को खुरच कर प्रतिमाएं तैयार करते हैं। काम पूरा करने में कई महीने लग जाते हैं और मूर्तियां होती हैं एक से बढ़कर एक।
0: आज का मुख्य वाक्य है
2: शशिन ओ तोरिमाशो,
0: यानी फोटो खींचते हैं। ये वाक्य सीखकर आप किसी को साथ में कुछ करने का सुझाव दे सकते हैं।
1: इस वाक्य में
5: शशिन
1: का मतलब है फोटो और
5: शशिन ओ तोरिमाशो
1: का अर्थ है फोटो खींचते।

0: यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी को साथ मिलकर कुछ करने का सुझाव देते समय क्रिया के मास रूप में से
1: मस
0: हटाकर
1: माशो
0: जोड़ते हैं।
1: शाशिन ओ तोरिमाशो
2: में क्रिया है
1: तोरु।
2: यहाँ इस क्रिया का अर्थ है फोटो खींचना। इसका मास रूप है
1: तोरिमास
2: और उससे बना है
1: तोरिमाशो।
0: तो वाक्य फिर से सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
1: शाशिन ओ तोरिमाशो शाशिन ओ तोरिमाशो।
2: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक औरत अपनी सहेली को किसी दुकान में साथ चलने को कह रही है।
3: この店に入りましょう。
4: いいですね。
0: पहले एक औरत ने कहा
3: この店に入りましょう。
2: इस दुकान में चलते हैं।
1: この店
0: का अर्थ है ये दुकान और उसके बाद लगा है कारक नी जो उस स्थान के बाद में लगता है जहाँ जाना है। उसके बाद आई है क्रिया
1: हाइरु
0: यानी अंदर जाना।
1: हाइरु
2: का मास रूप है
1: हाइरिमास
2: जिससे बना है
1: हाइरिमाशो।
0: जवाब में दूसरी औरत ने कहा
4: ई देसने
2: ठीक है।
0: ये सुझाव मानने का तरीका है। शायद आपको याद होगा
1: ई
0: का मतलब है अच्छा या ठीक।
2: तो सुनिए और दोहराइए।
1: हाइरिमाशो कोनो मिसे नी हाइरिमाशो।
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप सापोरो का घंटा घर देखने जाना चाहते हैं जो शहर के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। आप अपने दोस्त से कहना चाहते हैं घंटा घर देखने चलते हैं। ये वाक्य आप जापानी भाषा में कैसे बोलेंगे?
2: घंटा घर का जापानी शब्द है
1: तोकेदाई
2: और जाना के लिए क्रिया है
1: इकु
2: जिसका मास रूप है
1: इकिमास।
0: तो वाक्य बनाने का अभ्यास कीजिए।
5: तोकेदाई नी इकिमाशो तोकेदाई नी इकिमाशो।
0: अब मान लीजिए कि आप बहुत देर चलकर थक गए हैं और कहना चाहते हैं थोड़ा आराम करते हैं। थोड़ा को जापानी भाषा में कहते हैं
1: चोट्टो।
0: आराम करना के लिए क्रिया है
1: यासुमु
0: जिसका मास रूप है
1: यासुमिमास।
0: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
5: चोट्टो यासुमिमाशो ちょっと休みましょう।
2: अब बारी है आज के सहज वाक्य की जो मिया की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
4: सुगोई
1: सुगोई
0: का अर्थ है अरे वाह। कुछ देखकर हैरान प्रभावित या भावुक होने पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
2: तो आप भी सुनिए और साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए।
1: सुगोई।
0: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
4: すごい。 ダム 見て見て。 ああ、 大きいですね。 初めて見ました。
6: どうやって作ったんだろう。
4: 綺麗ですね。 みんなで写真を撮りましょう。
7: いいね。
2: और अब हम लेकर आए हैं अंश घूमे मिया के साथ जिसमें आज हम बता रहे हैं जापान के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक होक्काइडो के बारे में।
0: होक्काइडो जापान के सुदूर उत्तरी छोर पर स्थित प्रीफेक्चर है। वहाँ दूर दूर तक फैले मैदान हैं, दलदली जमीन है, खूबसूरत झीलें हैं और प्राकृतिक

0: पानी के कुंड भी।
1: इस खुले प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए वहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक जाते हैं। वहाँ की जलवायु देश के अन्य क्षेत्रों से अलग है। वहाँ वर्षा ऋतु नहीं है और गर्मियों में भी मौसम सुहावना रहता है। ये भी इस प्रिफेक्चर की लोकप्रियता के कारण है।
0: होक्काइडो में फुरानो के लैवेंडर फूलों के बाग बहुत प्रसिद्ध हैं। जुलाई में वहाँ की पहाड़ियों पर दूर दूर तक लैवेंडर के बैंगनी सा कालीन बिछ जाता है। बहुत खूबसूरत लगता है।
1: इसके अलावा वहाँ यूनेस्को विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल शिरेतोको में गिलहरियाँ, लोमड़ियाँ और अन्य बहुत सारे जीव जंतु मजे से घूमते देखे जा सकते हैं। यहाँ तक कि जंगली भालू भी। और आप क्रूज लेकर व्हेल देखने भी जा सकते हैं।
0: सर्दियों में होक्काइडो में बहुत ठंड पड़ती है। वहाँ भारी हिमपात होता है और तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। लेकिन इसी कारण वहाँ हिमोत्सव का और स्कीइंग जैसे सर्दियों के खेलों का आनंद लिया जा सकता है।
1: असाही कावा के असाही यामा चिड़ियाघर में आप बर्फ पर कतार से चलते पेंगुइन देख सकते हैं।
0: होक्काइडो का खाना भी लाजवाब है। जापान आने का अवसर मिले तो आप भी होक्काइडो की यात्रा जरूर कीजिएगा।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम टोक्यो वापस लौट आएंगी और एक दिलचस्प कैफे में जाएंगी। तब तक के लिए सायोनारा।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 30 जुलाई बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। जापान के कुमामोतो प्रीफेक्चर के अधिकारियों का कहना है कि प्रीफेक्चर में आए भूकंपों में 34 लोगों की मौत हो गई है। इनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनकी मौत संभवतः आपदा संबंधी कारणों से हुई। बचावकर्मी जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं, इसलिए ये संख्या अभी और बढ़ सकती है। कुमामोतो प्रीफेक्चर में आए भीषण भूकंप की तीव्रता जापान के 0 से 7 के भूकंप मापी पैमाने पर 7 दर्ज की गई। मौसम विज्ञान एजेंसी ने इस आपदा को 2026 कुमामोतो भूकंप नाम दिया है। एजेंसी का कहना है कि मंगलवार को आए शक्तिशाली भूकंप के बाद से बृहस्पतिवार दोपहर 2 बजे तक प्रीफेक्चर और आसपास के इलाकों में कुल 270 झटके दर्ज किए गए। इनमें मंगलवार को आया 7.1 की तीव्रता का भूकंप शामिल नहीं है। एजेंसी के अधिकारियों के अनुसार भूकंपीय गतिविधियां काफ़ी अधिक बनी हुई हैं और अब तक 5 निम्न की तीव्रता के 4 झटके और 4 की तीव्रता के 14 झटके आ चुके हैं। एजेंसी ने चेतावनी दी है कि भावी भूकंपों के स्थान और तीव्रता के आधार पर तेज झटके महसूस किए जा सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार अगले 1 सप्ताह या उससे अधिक समय तक, विशेषकर अगले कुछ दिनों में, बड़े झटकों का खतरा बना हुआ है। इस बीच प्रभावित क्षेत्रों में बिजली और जल की आपूर्ति अब भी बाधित है। 6 की तीव्रता का भूकंप झेलने वाले यात्सुशिरो शहर में बृहस्पतिवार सुबह से ही कई लोगों को पानी के टैंकरों के सामने कतार लगाए देखा गया। 70 से अधिक उम्र की एक महिला ने कहा कि परेशानी काफ़ी है, नहाने या मुंह हाथ धोने तक का पानी नहीं है। वहीं 40 से अधिक उम्र के एक व्यक्ति का कहना था कि कपड़े धोने जैसे रोज़मर्रा के कामों के लिए और यहां तक कि पीने के लिए भी पानी नहीं है और पर्याप्त भोजन भी नहीं है। एक विशेषज्ञ का कहना है कि मंगलवार को दक्षिण पश्चिमी प्रीफेक्चर कुमामोतो के एक शॉपिंग मॉल में भीषण विस्फोट उस दिन प्रीफेक्चर में आए तगड़े भूकंप के बाद मॉल में शायद ज्वलनशील गैस जमा होने से दबाव बढ़ने के कारण हुआ होगा। गौरतलब है कि ये विस्फोट काशिमा नगर के ईयोन मॉल कुमामोतो में हुआ। टोक्यो विश्वविद्यालय में ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के प्रोफेसर मोगी तोशियो का कहना है कि जांच पूरी होने तक विस्फोट

विस्फोट के कारणों के बारे में ठीक से कहा नहीं जा सकता, लेकिन मॉल में शायद प्रोपेन जैसी ज्वलनशील गैस जमा होने के बाद उसमें आग लग गई होगी। प्रोफेसर मोगी ने कहा कि किसी मकान के कमरे में विस्फोट होने की स्थिति में खिड़कियां तो टूट जाती हैं, लेकिन दीवारें खड़ी रहती हैं। उनका कहना है कि मॉल में खिड़कियां बहुत कम थीं और ऐसे में गैस का दाब इतना बढ़ गया होगा कि दीवारें ढह गईं, क्योंकि गैस को बाहर निकलने का रास्ता बहुत कम मिला। मोगी कहते हैं कि मॉल में पहली से दूसरी मंजिल तक फैली एक बड़ी खुली जगह थी और इतनी बड़ी जगह में इतनी अधिक मात्रा में गैस का जमा होना और उच्च दाब बनना असंभव है। मोगी को लगता है कि पीछे किसी कमरे जैसी बंद जगह में गैस का रिसाव हुआ होगा जिससे विस्फोट हुआ।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सनाए ने अपनी पार्टी की कार्यकारिणी को बताया है कि वो अप्रैल से शुरू होने वाले 2 वर्षों के लिए खाद्य पदार्थों पर उपभोग कर को घटाकर 1% करना चाहती हैं। इस योजना में निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए भत्ते भी शामिल हैं, जिनसे ये कर एक तरह से शून्य हो जाएगा। बृहस्पतिवार को लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी LDP की मंडल बैठक में ताकाइची ने इस योजना को सर्वोत्तम उपाय बताया। ये योजना LDP कर प्रणाली अनुसंधान आयोग के अध्यक्ष के हालिया प्रस्ताव पर आधारित है। ताकाइची ने पार्टी कार्यकारिणी को निर्देश दिया कि वो अगस्त की शुरुआत तक पार्टी के भीतर आम सहमति बनाने की दिशा में काम करे। LDP मुख्य रूप से अपनी कर समिति में आम सहमति बनाने के लिए चर्चा जारी रखेगी। बुधवार को ही बैठक में प्रधानमंत्री और अन्य दलों के नेताओं के बीच कर कटौती पर सहमति नहीं बन पाई थी। इसके बजाय उन्होंने विभिन्न दलों के रुख को सूचीबद्ध किया। वरिष्ठ अधिकारियों सहित LDP के कुछ सदस्य अब भी कर कटौती का विरोध कर रहे हैं। जापान सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के दुष्प्रभावों का हवाला देते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए अपने आर्थिक विकास अनुमान में कटौती की है। मंत्रिमंडल कार्यालय ने मार्च 2027 में समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपना नवीनतम अनुमान बृहस्पतिवार को जारी किया। सकल घरेलू उत्पाद GDP में मुद्रास्फीति को समायोजित करते हुए लगभग 0.9% की वृद्धि होने की उम्मीद है। ये पिछले साल दिसंबर के लगभग 1.3% के अनुमान से 0.4% अंक कम है। कार्यालय का कहना है कि कच्चे तेल की उच्च कीमतों के कारण खाद्य पदार्थों और माल की लागत बढ़ रही है और अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ रहा है। NHK को पता चला है कि जापान सरकार दक्षिण पश्चिम अफ्रीकी देश नामीबिया में दुर्लभ धातु खनन परियोजना में 5 अरब येन यानी लगभग 3.6 करोड़ डॉलर तक का निवेश करने की योजना बना रही है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि जापान का प्रमुख ट्रेडिंग हाउस टोयोटा त्सुशो इस परियोजना के लिए एक कंपनी का नेतृत्व करेगा। ये निवेश सरकार से संबद्ध जापान ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेटल्स एंड एनर्जी सिक्योरिटी के माध्यम से किया जाएगा। नामीबिया की खानों में डिस्प्रोसियम के विशाल भंडार हैं, जो शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए आवश्यक है। इनमें इट्रियम भी पाया जाता है, जिसका उपयोग स्मार्टफोन में होता है। जापान और नामीबिया की सरकारों ने फरवरी में दुर्लभ धातु खनिजों के खनन प्रयासों पर चर्चा करने पर सहमति व्यक्त की थी। इलेक्ट्रिक वाहनों, स्मार्टफोन और अन्य उपकरणों के निर्माताओं के लिए ऐसे खनिज अपरिहार्य हैं। जापान दुर्लभ धातु खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं में भी विविधता लाने के प्रयास कर रहा है, क्योंकि शीर्ष उत्पादक चीन निर्यात नियंत्रण कड़े कर रहा है। इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 22वें पाठ में सीखेंगे साथ मिलकर कुछ करने का सुझाव देना।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो चीनी फोटोग्राफर मिया और जापानी छात्र काइतो के साथ होक्काइडो में घूम रही है।
0: आज तीनों सापोरो हिमोत्सव देखने आए हैं। उनके सामने बर्फ से एक किले की बड़ी सी मूर्ति बनी हुई है। बहुत सारे लोग ये उत्सव देखने के लिए आए हुए हैं।
1: तो आइए सुनते हैं 22वें पाठ की बातचीत।
2: すごい! ダム! 見て!
3: ああ! 大きいですね! 初めて見ました!
4: どうやって作ったんだろう?
3: 綺麗ですね! みんなで写真を撮りましょう!
2: いいね!
0: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
1: किले की हिम प्रतिमा के सामने पहुंचकर मिया ने उत्सुकता से कहा,
2: "すごい!
1: अरे वाह!
2: ताम, मीते मीते!
1: ताम, देखो!"
0: ताम भी शिल्पकला देखकर बहुत प्रभावित हो गई। उसने कहा,
3: "大きいですね!
1: वाह! बड़ी है ना?
3: 初めて見ました!
1: पहली बार देख रही हूँ।
0: उसके बाद काइतो ने उस किले की मूर्ति की तरफ देखते हुए कहा,
4: どうやって作ったんだろう?
0: कैसे बनाई होगी?
1: फिर ताम ने कहा,
3: きれいですね!
1: सुंदर है ना?
3: みんなで写真を撮りましょう!
1: साथ में फोटो खींचते हैं।
0: तब मिया ने कहा,
2: いいね!
1: ठीक है।
0: सापोरो हिमोत्सव का आयोजन हर वर्ष फरवरी में होता है। इसमें बर्फ से बनी लगभग 200 प्रतिमाएं देखी जा सकती हैं। कुछ की ऊंचाई तो 15 मीटर तक भी होती है। इतनी बड़ी प्रतिमाएं बनाना आसान नहीं होता होगा।
1: शिल्पकार मचान बनाकर और क्रेन का इस्तेमाल करके बर्फ का ढेर लगाते हैं। उसके बाद में बर्फ को खुरच कर प्रतिमाएं तैयार करते हैं। काम पूरा करने में कई महीने लग जाते हैं और मूर्तियां होती हैं एक से बढ़कर एक।
0: आज का मुख्य वाक्य है
3: "写真を撮りましょう"
0: यानी फोटो खींचते हैं। ये वाक्य सीखकर आप किसी को साथ में कुछ करने का सुझाव दे सकते हैं।
1: इस वाक्य में
5: "写真"
1: का मतलब है फोटो और
5: "写真を撮りましょう"
1: का अर्थ है फोटो खींचते हैं।
0: यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि किसी को साथ मिलकर कुछ करने का सुझाव देते समय क्रिया के मास रूप में से
5: मस
0: हटाकर
5: माशो
0: जोड़ते हैं।
5: शाशी ओ थोरी माशो
1: में क्रिया है
5: थोर।
1: यहाँ इस क्रिया का अर्थ है फोटो खींचना। इसका मास रूप है
5: थोरी मस
1: और उससे बना है
5: थोरी माशो।
0: तो वाक्य फिर से सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: शाशी ओ थोरी माशो। शाशी ओ थोरी माशो।

0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक औरत अपनी सहेली को किसी दुकान में साथ चलने को कह रही है।
1: この店に入りましょう。
2: いいですね。
3: पहले एक औरत ने कहा,
1: この店に入りましょう。
0: इस दुकान में चलते हैं।
4: この店
3: का अर्थ है ये दुकान और उसके बाद लगा है कारक नी, जो उस स्थान के बाद में लगता है जहाँ जाना है। उसके बाद आई है क्रिया
4: हाइर,
3: यानी अंदर जाना।
4: हाइर
0: का मास रूप है
4: हाइरिमास,
0: जिससे बना है
4: हाइरिमाशो।
3: जवाब में दूसरी औरत ने कहा,
2: いいですね,
0: ठीक है।
3: ये सुझाव मानने का तरीका है। शायद आपको याद होगा,
4: ई
3: का मतलब है अच्छा या ठीक।
0: तो सुनिए और दोहराइए।
4: हाइरिमाशो, कोनो मिसे नी हाइरिमाशो।
3: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप सापोरो का घंटा घर देखने जाना चाहते हैं, जो शहर के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। आप अपने दोस्त से कहना चाहते हैं, घंटा घर देखने चलते हैं। ये वाक्य आप जापानी भाषा में कैसे बोलेंगे?
0: घंटा घर का जापानी शब्द है
4: तोकेदाई,
0: और जाना के लिए क्रिया है
4: इकु,
0: जिसका मास रूप है
4: इकिमास।
3: तो वाक्य बनाने का अभ्यास कीजिए।
5: तोकेदाई नी इकिमाशो, तोकेदाई नी इकिमाशो।
3: अब मान लीजिए कि आप बहुत देर चलकर थक गए हैं और कहना चाहते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। थोड़ा को जापानी भाषा में कहते हैं
4: चोट्टो।
3: आराम करना के लिए क्रिया है
4: यासुमु,
3: जिसका मास रूप है
4: यासुमिमास।
3: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
5: चोट्टो यासुमिमाशो, ちょっと休みましょう。
0: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो मिया की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
2: すごい,
4: すごい
3: का अर्थ है अरे वाह। कुछ देखकर हैरान, प्रभावित या भावुक होने पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: तो आप भी सुनिए और साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए।
4: すごい।
3: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: すごい! ダム, 見て見て!
6: あ、大きいですね! 初めて見ました!
7: どうやって作ったんだろう?
6: 綺麗ですね! みんなで写真を撮りましょう!
2: いいね! トラベルガイド。
0: और अब हम लेकर आए हैं अंश घूमे मिया के साथ, जिसमें आज हम बता रहे हैं जापान के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक होक्काइडो के बारे में।
3: होक्काइडो जापान के सुदूर उत्तरी छोर पर स्थित प्रीफेक्चर है। वहां दूर दूर तक फैले मैदान हैं, दलदली जमीन है, खूबसूरत झीलें हैं और प्राकृतिक गर्म पानी के कुंड भी।
0: इस खुले प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए वहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक जाते हैं। वहाँ की जलवायु देश के अन्य क्षेत्रों से अलग है। वहाँ वर्षा ऋतु नहीं है और गर्मियों में भी मौसम सुहावना रहता है। ये भी इस प्रीफेक्चर की लोकप्रियता के कारण है।
3: होक्काइडो में फुरानो के लैवेंडर फूलों के बाग बहुत प्रसिद्ध है। जुलाई में वहाँ की पहाड़ियों पर दूर दूर तक लैवेंडर के बैंगनी सा कालीन बिछ जाता है। बहुत खूबसूरत लगता है।
0: इसके अलावा वहाँ यूनेस्को विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल शिरेतोको में गिलहरियाँ, लोमड़ियाँ और अन्य बहुत सारे जीव जंतु मजे से घूमते देखे जा सकते हैं, यहाँ तक कि जंगली भालू भी। और आप क्रूज लेकर व्हेल देखने भी जा सकते हैं।
3: सर्दियों में होक्काइडो में बहुत ठंड पड़ती है, वहाँ भारी हिमपात होता है और तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। लेकिन इसी कारण वहाँ हिमोत्सव का और स्कीइंग जैसे सर्दियों के खेलों का आनंद लिया जा सकता है।
0: असाही कावा के असाही यामा चिड़ियाघर में आप बर्फ पर कतार से चलते पेंगुइन देख सकते हैं।
3: होक्काइडो का खाना भी लाजवाब है। जापान आने का अवसर मिले तो आप भी होक्काइडो की यात्रा जरूर कीजिएगा।
0: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
3: अगले पाठ में ताम टोक्यो वापस लौट आएंगी और एक दिलचस्प कैफे में जाएंगी। तब तक के लिए सायोनारा।

0: आप ये खबरें NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। अब आज की बाकी खबरें समाप्त फरमाइए। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ताकाइची सनाए ने अपनी पार्टी के मुंतज़मीन आला को बताया है कि वो अप्रैल से आइंदा 2 साल के लिए अशियाए खुर्दोनोश पर सारिफ टैक्स कम करके 1% करने का इरादा रखती हैं। इस मंसूबे में कम और दरमियानी आमदनी वाले अफराद के लिए इजाफी मराआत शामिल होंगी, जिनसे उनके लिए टैक्स की शरह अमली तौर पर सिफर हो जाएगी। जुमेरात को लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के बोर्ड के इजलास में ताकाइची ने इस मंसूबे को बेहतरीन अमली रास्ता करार दिया। ये मंसूबा टैक्स निज़ाम पर LDP रिसर्च कमीशन के सरबराह की एक हालिया तजवीज़ पर मबनी है। ताकाइची ने पार्टी मुंतज़मीन आला को हिदायत की कि वो अगस्त के अवायल तक पार्टी के अंदर इत्तेफाक़ राय पैदा करने के लिए काम करें। आरा में हम आहंगी पैदा करने के लिए LDP बुनियादी तौर पर अपने टैक्स पैनल में बातचीत को आगे बढ़ाएगी। बुध को होने वाले एक इजलास में वज़ीर आज़म और दीगर जमातों के रहनुमा टैक्स कटौती पर किसी इत्तेफाक़ राय पर नहीं पहुँच सके। इसके बजाय उन्होंने मुख्तलिफ जमातों के मौक़िफ की फहरिस्त तरतीब दी। पार्टी के आला ओहदेदारों समेत LDP के कुछ अरकान अब भी टैक्स कटौती की मुखालफत कर रहे हैं। जापान की हुकूमत ने मशरिक़ वुस्ता में तनाज़ात के असरात का हवाला देते हुए रवां माली साल के लिए अपनी इक्तिसादी तरक्की के तखमीने में कमी कर दी है। काबीना दफ्तर ने मार्च 2027 में ख़त्म होने वाले माली साल के लिए जुमेरात को अपना ताज़ा तरीन तखमीना जारी किया। अफरात ज़र से मुताबिकत पैदा करने के बाद अब मजमू मुल्की पैदावार में तकरीबन 0.9% इजाफा मतवक्को है। ये गुज़िश्ता दिसंबर में जारी करदा तकरीबन 1.3% के पिछले तखमीने से 0.4% कम है। दफ्तर का कहना है कि खाम तेल की निस्बतन ऊंची कीमतें खुराक और खाम माल की कीमतों को बढ़ा रही हैं और मईशत पर मनफी असरात मुरतब कर रही हैं। NHK को मालूम हुआ है कि जापानी हुकूमत जनूब मगरबी अफ्रीका के मुल्क नमीबिया में कमयाब मादनियात की कानकनी के एक मंसूबे में 5 बिलियन येन या तकरीबन 30.6 मिलियन डॉलर तक की सरमायाकारी करने वाली है। सरकारी हुकाम का कहना है कि जापान का बड़ा ट्रेडिंग हाउस टोयोटा सुशो इस मंसूबे के लिए एक कंपनी की क़यादत करेगा। ये सरमायाकारी हुकूमत से मुंसलिक जापान ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेटल्स एंड एनर्जी सिक्योरिटी के ज़रिए की जाएगी। नमीबिया में कानों में डिस्प्रोसियम के बड़े ज़खायर हैं, जो ताकतवर मिकनतीस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इन कानों में इट्रियम भी मौजूद है, जो स्मार्टफोन्स में इस्तेमाल होता है। जापान और नमीबिया की हुकूमतों ने फरवरी में कमयाब धातों की कानकनी में तआवुन से मुतालिक बातचीत करने पर इत्तेफाक किया था। इस तरह की मादनियात बरकी गाड़ियाँ, स्मार्टफोन्स और दीगर आलात बनाने वालों के लिए नागुज़ीर हैं। जापान कमयाब मादनियात के फराहम कुनिंदगान को मतनव्व बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी पैदावार वाला मुल्क चीन बरामदी कंट्रोल्स सख्त करता जा रहा है।
1: इसके साथ ही खबरें खत्म हुई। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए NHK.JP/Urdu।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी

जापान के कुमामोतो प्रीफेक्चर के अधिकारियों का कहना है कि प्रीफेक्चर में आए भूकंपों में 34 लोगों की मौत हो गई है। इनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनकी मौत संभवतः आपदा संबंधी कारणों से हुई। बचावकर्मी जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं, इसलिए ये संख्या अभी और बढ़ सकती है। कुमामोतो प्रीफेक्चर में आए भीषण भूकंप की तीव्रता जापान के 0 से 7 के भूकंप मापी पैमाने पर 7 दर्ज की गई। मौसम विज्ञान एजेंसी ने इस आपदा को 2026 कुमामोतो भूकंप नाम दिया है। एजेंसी का कहना है कि मंगलवार को आए शक्तिशाली भूकंप के बाद से बृहस्पतिवार दोपहर 2 बजे तक प्रीफेक्चर और आसपास के इलाकों में कुल 270 झटके दर्ज किए गए। इनमें मंगलवार को आया 7.1 की तीव्रता का भूकंप शामिल नहीं है। एजेंसी के अधिकारियों के अनुसार भूकंपीय गतिविधियां काफ़ी अधिक बनी हुई हैं और अब तक 5 निम्न की तीव्रता के 4 झटके और 4 की तीव्रता के 14 झटके आ चुके हैं। एजेंसी ने चेतावनी दी है कि भावी भूकंपों के स्थान और तीव्रता के आधार पर तेज झटके महसूस किए जा सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार अगले 1 सप्ताह या उससे अधिक समय तक, विशेषकर अगले कुछ दिनों में, बड़े झटकों का खतरा बना हुआ है। इस बीच प्रभावित क्षेत्रों में बिजली और जल की आपूर्ति अब भी बाधित है। 6 की तीव्रता का भूकंप झेलने वाले यात्सुशिरो शहर में बृहस्पतिवार सुबह से ही कई लोगों को पानी के टैंकरों के सामने कतार लगाए देखा गया। 70 से अधिक उम्र की एक महिला ने कहा कि परेशानी काफ़ी है, नहाने या मुंह हाथ धोने तक का पानी नहीं है। वहीं 40 से अधिक उम्र के एक व्यक्ति का कहना था कि कपड़े धोने जैसे रोज़मर्रा के कामों के लिए और यहां तक कि पीने के लिए भी पानी नहीं है और पर्याप्त भोजन भी नहीं है। एक विशेषज्ञ का कहना है कि मंगलवार को दक्षिण पश्चिमी प्रीफेक्चर कुमामोतो के एक शॉपिंग मॉल में भीषण विस्फोट उस दिन प्रीफेक्चर में आए तगड़े भूकंप के बाद मॉल में शायद ज्वलनशील गैस जमा होने से दबाव बढ़ने के कारण हुआ होगा। गौरतलब है कि ये विस्फोट काशिमा नगर के ईयोन मॉल कुमामोतो में हुआ। टोक्यो विश्वविद्यालय में ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के प्रोफेसर मोगी तोशियो का कहना है कि जांच पूरी होने तक विस्फोट के कारणों के बारे में ठीक से कहा नहीं जा सकता, लेकिन मॉल में शायद प्रोपेन जैसी ज्वलनशील गैस जमा होने के बाद उसमें आग लग गई होगी। प्रोफेसर मोगी ने कहा कि किसी मकान के कमरे में विस्फोट होने की स्थिति में खिड़कियां तो टूट जाती हैं, लेकिन दीवारें खड़ी रहती हैं। उनका कहना है कि मॉल में खिड़कियां बहुत कम थीं और ऐसे में गैस का दाब इतना बढ़ गया होगा कि दीवारें ढह गईं, क्योंकि गैस को बाहर निकलने का रास्ता बहुत कम मिला। मोगी कहते हैं कि मॉल में पहली से दूसरी मंजिल तक फैली एक बड़ी खुली जगह थी और इतनी बड़ी जगह में इतनी अधिक मात्रा में गैस का जमा होना और उच्च दाब बनना असंभव है। मोगी को लगता है कि पीछे किसी कमरे जैसी बंद जगह में गैस का रिसाव हुआ होगा जिससे विस्फोट हुआ।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सनाए ने अपनी पार्टी की कार्यकारिणी को बताया है कि वो अप्रैल से शुरू होने वाले 2 वर्षों के लिए खाद्य पदार्थों पर उपभोग कर को घटाकर 1% करना चाहती हैं। इस योजना में निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए भत्ते भी शामिल हैं, जिनसे ये कर एक तरह से शून्य हो जाएगा। बृहस्पतिवार को लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी LDP की मंडल बैठक में ताकाइची ने इस योजना को सर्वोत्तम उपाय बताया। ये योजना LDP कर प्रणाली अनुसंधान आयोग के अध्यक्ष के हालिया प्रस्ताव पर आधारित है। ताकाइची ने पार्टी कार्यकारिणी को निर्देश दिया कि वो अगस्त की शुरुआत तक पार्टी के भीतर आम सहमति बनाने की दिशा में काम करे। LDP मुख्य रूप से अपनी कर समिति में आम सहमति बनाने के लिए चर्चा जारी रखेगी। बुधवार को ही बैठक में प्रधानमंत्री और अन्य दलों के नेताओं के बीच कर कटौती पर सहमति नहीं बन पाई थी। इसके बजाय उन्होंने विभिन्न दलों के रुख को सूचीबद्ध किया। वरिष्ठ अधिकारियों सहित LDP के कुछ सदस्य अब भी

0: कर कटौती का विरोध कर रहे हैं। जापान सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के दुष्प्रभावों का हवाला देते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए अपने आर्थिक विकास अनुमान में कटौती की है। मंत्रिमंडल कार्यालय ने मार्च 2027 में समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपना नवीनतम अनुमान बृहस्पतिवार को जारी किया। सकल घरेलू उत्पाद GDP में मुद्रास्फीति को समायोजित करते हुए लगभग 0.9% की वृद्धि होने की उम्मीद है। ये पिछले साल दिसंबर के लगभग 1.3% के अनुमान से 0.4% अंक कम है। कार्यालय का कहना है कि कच्चे तेल की उच्च कीमतों के कारण खाद्य पदार्थों और माल की लागत बढ़ रही है और अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ रहा है। NHK को पता चला है कि जापान सरकार दक्षिण पश्चिम अफ्रीकी देश नामीबिया में दुर्लभ धातु खनन परियोजना में 5 अरब येन यानी लगभग 3.6 करोड़ डॉलर तक का निवेश करने की योजना बना रही है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि जापान का प्रमुख ट्रेडिंग हाउस टोयोटा त्सुशो इस परियोजना के लिए एक कंपनी का नेतृत्व करेगा। ये निवेश सरकार से संबद्ध जापान ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेटल्स एंड एनर्जी सिक्योरिटी के माध्यम से किया जाएगा। नामीबिया की खानों में डिस्प्रोसियम के विशाल भंडार हैं जो शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए आवश्यक है। इनमें इट्रियम भी पाया जाता है जिसका उपयोग स्मार्टफोन में होता है। जापान और नामीबिया की सरकारों ने फरवरी में दुर्लभ धातु खनिजों के खनन प्रयासों पर चर्चा करने पर सहमति व्यक्त की थी। इलेक्ट्रिक वाहनों, स्मार्टफोन और अन्य उपकरणों के निर्माताओं के लिए ऐसे खनिज अपरिहार्य हैं। जापान दुर्लभ धातु खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं में भी विविधता लाने के प्रयास कर रहा है क्योंकि शीर्ष उत्पादक चीन निर्यात नियंत्रण कड़े कर रहा है। इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 22वें पाठ में सीखेंगे साथ मिलकर कुछ करने का सुझाव देना।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो चीनी फोटोग्राफर मिया और जापानी छात्र काइतो के साथ होक्काइडो में घूम रही है।
0: आज तीनों सापोरो हिमोत्सव देखने आए हैं। उनके सामने बर्फ से एक किले की बड़ी सी मूर्ति बनी हुई है। बहुत सारे लोग ये उत्सव देखने के लिए आए हुए हैं।
1: तो आइए सुनते हैं 22वें पाठ की बातचीत।
2: すごい。ダム、見て見て。ああ、大きいですね。初めて見ました。
3: どうやって作ったんだろう。
2: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
4: いいね。

0: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
1: किले की हिम प्रतिमा के सामने पहुंचकर मिया ने उत्सुकता से कहा,
2: すごい!
1: अरे वाह!
2: ताम, मीते, मीते!
1: ताम, देखो!
0: ताम भी शिल्पकला देखकर बहुत प्रभावित हो गई। उसने कहा,
2: ओकी देसने!
1: वाह, बड़ी है ना?
2: हजुमेते मिमाशिता!
1: पहली बार देख रही हूँ।
0: उसके बाद काइतो ने उस किले की मूर्ति की तरफ देखते हुए कहा,
3: どうやって作ったんだろう?
0: कैसे बनाई होगी?
1: फिर ताम ने कहा,
2: きれいですね!
1: सुंदर है ना?
2: みんなで写真を撮りましょう!
1: साथ में फोटो खींचते हैं।
0: तब मिया ने कहा,
2: いいね!
1: ठीक है।
0: सापोरो हिमोत्सव का आयोजन हर वर्ष फरवरी में होता है। इसमें बर्फ से बनी लगभग 200 प्रतिमाएं देखी जा सकती हैं। कुछ की ऊंचाई तो 15 मीटर तक भी होती है। इतनी बड़ी प्रतिमाएं बनाना आसान नहीं होता होगा।
1: शिल्पकार मचान बनाकर और क्रेन का इस्तेमाल करके बर्फ का ढेर लगाते हैं। उसके बाद में बर्फ को खुरच कर प्रतिमाएं तैयार करते हैं। काम पूरा करने में कई महीने लग जाते हैं और मूर्तियां होती हैं एक से बढ़कर एक।
0: आज का मुख्य वाक्य है, यानी फोटो खींचते हैं। ये वाक्य सीखकर आप किसी को साथ में कुछ करने का सुझाव दे सकते हैं।
1: इस वाक्य में
4: शाशिन
1: का मतलब है फोटो और
4: शाशिन ओ तोरीमाशो
1: का अर्थ है फोटो खींचते हैं।
0: यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी को साथ मिलकर कुछ करने का सुझाव देते समय क्रिया के मास रूप में से
4: मस
0: हटाकर
4: माशो
0: जोड़ते हैं।
4: शाशिन ओ तोरीमाशो
1: में क्रिया है
4: तोरु।
1: यहाँ इस क्रिया का अर्थ है फोटो खींचना। इसका मास रूप है
4: तोरीमास
1: और उससे बना है
4: तोरीमाशो।
0: तो वाक्य फिर से सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
4: शाशिन ओ तोरीमाशो, शाशिन ओ तोरीमाशो।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक औरत अपनी सहेली को किसी दुकान में साथ चलने को कह रही है।
5: この店に入りましょう。
2: いいですね。
0: पहले एक औरत ने कहा,
5: この店に入りましょう。
1: इस दुकान में चलते हैं।
4: この店
0: का अर्थ है ये दुकान और उसके बाद लगा है कारक नी, जो उस स्थान के बाद में लगता है जहाँ जाना है। उसके बाद आई है क्रिया
4: हाइरु,
0: यानी अंदर जाना।
4: हाइरु
1: का मास रूप है
4: हाइरिमास,
1: जिससे बना है
4: हाइरिमाशो।
0: जवाब में दूसरी औरत ने कहा,
2: ई देसने,
1: ठीक है।
0: ये सुझाव मानने का तरीका है। शायद आपको याद होगा
4: ई
0: का मतलब है अच्छा या ठीक।
1: तो सुनिए और दोहराइए,
4: हाइरिमाशो, कोनो मिसे नी हाइरिमाशो।
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप सापोरो का घंटाघर देखने जाना चाहते हैं, जो शहर के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। आप अपने दोस्त से कहना चाहते हैं घंटाघर देखने चलते हैं। ये वाक्य आप जापानी भाषा में कैसे बोलेंगे?
1: घंटाघर का जापानी शब्द है
4: तोकेदाई
1: और जाना के लिए क्रिया है
4: इकु,
1: जिसका मास रूप है
4: इकिमास।
0: तो वाक्य बनाने का अभ्यास कीजिए।
6: तोकेदाई नी इकिमाशो, तोकेदाई नी इकिमाशो।
0: अब मान लीजिए कि आप बहुत देर चलकर थक गए हैं और कहना चाहते हैं थोड़ा आराम करते हैं। थोड़ा को जापानी भाषा में कहते हैं
4: चोट्टो।
0: आराम करना के लिए क्रिया है
4: यासुमु,
0: जिसका मास रूप है
4: यासुमिमास।
0: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
6: ちょっと休みましょう。ちょっと休みましょう。
1: अब बारी है आज के सहज वाक्य की जो मियां की पंक्ति है आप भी याद कर लीजिए
2: सुगोई
4: सुगोई
0: का अर्थ है अरे वाह कुछ देखकर हैरान प्रभावित या भावुक होने पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं
1: तो आप भी सुनिए और साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए
4: सुगोई
0: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं
2: すごい。ダム、見て見て。
3: ああ、大きいですね。初めて見ました。
7: どうやって作ったんだろう。
3: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
2: いいね。
4: トラベルガイド
1: और अब हम लेकर आए हैं अंश घूमे मिया के साथ जिसमें आज हम बता रहे हैं जापान के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक होक्काइडो के बारे में
0: होक्काइडो जापान के सुदूर उत्तरी छोर पर स्थित प्रिफेक्चर है वहां दूर दूर तक फैले मैदान हैं दलदली जमीन है खूबसूरत झीलें हैं और प्राकृतिक गर्म पानी के कुंड भी
1: इस खुले प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए वहां बड़ी संख्या में पर्यटक जाते हैं वहां की जलवायु देश के अन्य क्षेत्रों से अलग है वहां वर्षा ऋतु नहीं है और गर्मियों में भी मौसम सुहावना रहता है ये भी इस प्रिफेक्चर की लोकप्रियता के कारण है
0: होक्काइडो में फुरानो के लैवेंडर फूलों के बाग बहुत प्रसिद्ध हैं जुलाई में वहाँ की पहाड़ियों पर दूर दूर तक लैवेंडर के बैंगनी सा कालीन बिछ जाता है बहुत खूबसूरत लगता है
1: इसके अलावा वहाँ यूनेस्को विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल शिरेतोको में गिलहरियाँ लोमड़ियाँ और अन्य बहुत सारे जीव जंतु मजे से घूमते देखे जा सकते हैं यहाँ तक कि जंगली भालू भी और आप क्रूज लेकर व्हेल देखने भी जा सकते हैं
0: सर्दियों में होक्काइडो में बहुत ठंड पड़ती है वहाँ भारी हिमपात होता है और तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है लेकिन इसी कारण वहाँ हिमोत्सव का और स्कीइंग जैसे सर्दियों के खेलों का आनंद लिया जा सकता है
1: असाही कावा के असाही यामा चिड़ियाघर में आप बर्फ पर कतार से चलते पेंगुइन देख सकते हैं
0: होक्काइडो का खाना भी लाजवाब है जापान आने का अवसर मिले तो आप भी होक्काइडो की यात्रा जरूर कीजिएगा
1: दोस्तों आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा
0: अगले पाठ में ताम टोक्यो वापस लौट आएंगी और एक दिलचस्प कैफे में जाएंगी तब तक के लिए सायोनारा

0: आप ये खबरें NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। अब आज की बाकी खबरें समाप्त फरमाइए। जापानी वजीर आजम ताकाइची सनाए ने अपनी पार्टी के मुंतजमीन आला को बताया है कि वो अप्रैल से आइंदा 2 साल के लिए अशियाए खुर्दोनोश पर सारिफ टैक्स कम करके 1% करने का इरादा रखती हैं। इस मंसूबे में कम और दरमियानी आमदनी वाले अफराद के लिए इजाफी मराआत शामिल होंगी, जिनसे उनके लिए टैक्स की शरह अमली तौर पर सिफर हो जाएगी। जुमेरात को लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के बोर्ड के इजलास में ताकाइची ने इस मंसूबे को बेहतरीन अमली रास्ता करार दिया। ये मंसूबा टैक्स निज़ाम पर LDP रिसर्च कमीशन के सरबराह की एक हालिया तजवीज़ पर मबनी है। ताकाइची ने पार्टी मुंतजमीन आला को हिदायत की कि वो अगस्त के अवायल तक पार्टी के अंदर इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए काम करें। आरा में हम आहंगी पैदा करने के लिए LDP बुनियादी तौर पर अपने टैक्स पैनल में बातचीत को आगे बढ़ाएगी। बुध को होने वाले एक इजलास में वजीर आजम और दीगर जमातों के रहनुमा टैक्स कटौती पर किसी इत्तेफाक राय पर नहीं पहुँच सके। इसके बजाय उन्होंने मुख्तलिफ जमातों के मौक़िफ़ की फहरिस्त तरतीब दी। पार्टी के आला अहदेदारों समेत LDP के कुछ अरकान अब भी टैक्स कटौती की मुखालफत कर रहे हैं। जापान की हुकूमत ने मशरिक़ वुस्ता में तनाज़ात के असरात का हवाला देते हुए रवां माली साल के लिए अपनी इक्तिसादी तरक्की के तखमीने में कमी कर दी है। काबीना दफ्तर ने मार्च 2027 में ख़त्म होने वाले माली साल के लिए जुमेरात को अपना ताज़ा तरीन तखमीना जारी किया। अफरात ज़र से मुताबिकत पैदा करने के बाद अब मजमू मुल्की पैदावार में तकरीबन 0.9% इजाफा मतवक्को है। ये गुज़िश्ता दिसंबर में जारी करदा तकरीबन 1.3% के पिछले तखमीने से 0.4% पॉइंट्स कम है। दफ्तर का कहना है कि खाम तेल की निस्बतन ऊंची कीमतें खुराक और खाम माल की कीमतों को बढ़ा रही हैं और मईशत पर मनफी असरात मुरतब कर रही हैं। NHK को मालूम हुआ है कि जापानी हुकूमत जनूब मगरबी अफ्रीका के मुल्क नमीबिया में कमयाब मादनियात की कानकनी के एक मंसूबे में 5 बिलियन येन या तकरीबन 30.6 मिलियन डॉलर तक की सरमायाकारी करने वाली है। सरकारी हुकाम का कहना है कि जापान का बड़ा ट्रेडिंग हाउस टोयोटा सुशो इस मंसूबे के लिए एक कंपनी की क़यादत करेगा। ये सरमायाकारी हुकूमत से मुंसलिक जापान ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेटल्स एंड एनर्जी सिक्योरिटी के ज़रिए की जाएगी। नमीबिया में कानों में डिस्प्रोसियम के बड़े ज़खायर हैं, जो ताकतवर मिकनतीस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इन कानों में इट्रियम भी मौजूद है, जो स्मार्टफोन्स में इस्तेमाल होता है। जापान और नमीबिया की हुकूमतों ने फरवरी में कमयाब धातों की कानकनी में तआवुन से मुतालिक बातचीत करने पर इत्तेफाक किया था। इस तरह की मादनियात बरकी गाड़ियाँ, स्मार्टफोन्स और दीगर आलात बनाने वालों के लिए नागुज़ीर हैं। जापान कमयाब मादनियात के फराहम कुनिंदगान को मतनव्वो बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी पैदावार वाला मुल्क चीन बरामदी कंट्रोल्स सख्त करता जा रहा है।
1: इसके साथ ही खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए NHK.JP/Urdu।